दुख दारू सुख रोग पया जहाँ सुख काम न होई। तू करता करना मैं ना ही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ। जात में जो जोत में जाता कल कला भरपूर है। तू सच्चा सर से सवाल हो जिनकी

सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो।

हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जान युग में सुखवासी से मुकत पाए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते

थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा कर तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन

जब उदकर खुकरा कर तारा प्रजा तारत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ।

तज कीनी उत भुज खान बहुर राज दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपाव।

हारो तुम गावो मेरी निरपाव का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन समार संबत साह लिखिया मिल कर पावो तेल देव सजन असी सड़िया ज्यों हो वै साहिब स्यों मेल कर करे हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से देहयावन रागा समहला पहला शे घर शे गुर शे उपदेस गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तोए रहाओ विश्वे चसियां कड़ियां पह

रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बंदराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता सबदवा जंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त ननायक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंद बिन सहस तव गंद विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसदै चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सो आरती होए हर चरण कबल मकरंद लोभित मनो अनंदन मोहे आई प्यासा कृपा जल देह नानक सारिंग कौ होए जाते तेरा नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भौ भरिया मिल साधु खंडल खंडाहे

धर्म सुख उपजै भाई सो आत्म तत् विचारी रहा शास्त्र वेद बकै खड़ो भाई कर्म करो संसारी पाखंड मैल न चुके भाई अंतर मैल विकारी इन बिद डूबी माकुरी भाई ऊंडी सिर कै भारी दुरमत घणी विभूति भाई दूजे भाए खुआई बिन सतगुर नाम न पाई है भाई

उपजै पाई मन निर्मल साच समाई गुर सेवे सो बूझै पाई गुर बिन मग न पाई जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई कूड़ बोल बिख खाई पंडित दही विलोइया पाई विचो निकले तत् जल मथिए जल देखिए पाई एहो जग एहावत गुरबिन भरम विगूचिए पाई घट घट देव अलख ए जग तागो सूत को पाई दै दिस बांधो माए बिन गुर गाठ न छूटे पाई थाके कर्म कमाए एह जग परम भुलाया पाई कहना कछु न जाए गुर मिलिए पौ मन वसै पाई पै मरना सच लेख मंजन दान चंगियाइया पाई दर गए नाम विशेख गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वसिया चूका भीख एहो तन हाट सराफ को पाई वखर नाम अपार एहो वखर व्यापारी सो दृढ़ पाई

सारो चरण कमलित में उड़दारो कारण कारण तो प्रसमरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत एहो तन तन चो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहि सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस तन को चार कुंट टूट पावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित माच मीत सो सुख साधु संग परीत जिस उपा को करा परिकरणी सा सुपा भज हर की सरणी अनुकु पावे रोग न जाए रोग मिटाए हर औख दलाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे प्रमाण मन प्रभु दो हर कह नाए दै जिस दावत आवे ठाए ताको विघ्न ना लागे कोई जा कह हृदय बसे हर सोई कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाऊ बहु पिछे पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रकाश तिथ घर जाए बसे अपनासी को नानक काटी जम्पासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवा गवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव एव रतन जन्म का हे उतार हर हर सिमर प्राण दार अनेक उपाव न छूटन हार सिमरत साषद भेद विचार हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नान पल पाए संगना चाल तेरे तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना सुत मीत गुटमर बंता इनते कहो तुम कौन सनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कौन छुटकार हस हस्ती रथ सवारी छोटा डंप झूठ पासारी जिन दिए चित बुझे ना बिगाना नाम विस्तार नाम प्रस्ताना गुर के मतुले याने भगत बिना बोडू बेस्याने हर के भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमरा को मन माही जन्म जन्म के किल बिग जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कह त्रैत कर पाओ सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ गुण गाव तेरी उतर रमैलु बिनित जाए हो मैं बिपैलु होए अचिंत बसै सुख नाल सात ग्रह तर नाम समाड़ छाड़ सियान सगली मना साध संग पावे सच तरा हर कुंजी संस्करो व्यवहार इया सुख तर गए जयकार सर्व निरंतर एको देख को नानक जा कह मस्तकलेख एको जप एको साधा एक सिमर एको मन आहे एकच के गुण का वनंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर है प्रव्याप अनक विस्तार एक थे भय एक राद प्राचत गए मंथन अंतर एक प्रव्राता गुर प्रसाद नानक एक जाता चलो फिरत फिरत प्रभ आया प्रिया तो चरणाय नानक की प्रभ बेनती अपने भक्ति लाए परि जाचक जिन जाते प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम।

चरण कमल सो लाग प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक कोटे को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर जस पावे बिरला कोई जिन चाखिया से जिन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डूलाने तू बर परे प्रेम रत रंग उपजे चाओ साध के संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगा सम दिन युलाग बड़ भागी जिपिया ब्रह्म सोई नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुरु ते निन मन मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख ब्रह्म गया इस पुण्य सरदा सत पूरे रहो रहा सद संग हजूरी जिसका शासन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों विसरे जे काल ना पाने सो क्यों विसरे जे किया जाने सो क्यों विसरे जिन सब किस दिया सो क्यों विसरे जे जीवन जिया सो क्यों विसरे जे अग्न में राख है गुरु प्रताप को बिल्ला राख है सो क्यों विसरे जे भिक्ति काट है जन्म जन्म का टूटा गांड है गुरपुर है तते बुझाया प्रभु अपना नानक जनते आया साजन संत करो एव काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहु आप जपो अवरह नाम जपावहु भगत पाए त्रिय संसार बिन भक्ति तन होशी सार सर्व कल्याण सुख निज नाम मूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुंदास उपजे प्रेत प्रेम रस्याव मंत्र यंत्र यही सुआव नेत्रोपेख दृश्य सुख होई मन विषय साधु चरण धोई भक्त जना कह मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करम्या गुरु प्रताद नाम जप लया ताके उपमा कहीं ना जाए नानक रहा सर्व समाय प्रभ बख्शिंदु दीन दयालु भक्तु वसलसला कृपालु अनाथ नाथ गोविंद गोपालु सर्व घटा कर्त

जब आकार एवं कचरा जी चेता पाप पुन तब कहते होता जब दारिया पन सुन समान तब बैर ग्रोर किस चंग कमात जब इसका वर्ण चीन ना जापत तब हरक सोग कोंक से व्यापत जब यापन याप आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत ब्रह्म आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना तू जा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कोह किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सिंह सुगत कहूँ की ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत धराय सब कौन नीडर कौन कत डराय आपन की ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अपना से सुख अपन आसन तब जन्म मरण को कहाँ बिना सुन जब पूर्ण कर्ता प्रभु होए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रवेका तब चित्र गुपत खिचिपुत सुलेखा जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपनी आप ही अतर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जाओ जय निर्मल पुरख प्रगमत होता तह निर्मैर कहो क्या दोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अपमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छाल छिद्र लगत को कीस जय ज्योत तुरुपी ज्योत संभावै तय किसै भूख कौन तृप्तावै करण करावन करण हार नानक करती का नाई सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्वकला आप है परवीन तह वीर कतेब कहाँ कुचीन जब ये अपने आप उतार है तो सुगन कहाँ विचार है ये आप मुची अपने आप निराव तय कौन ठाकुर कुन कही है चेरा बिस्माना बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जे अचल अछेद अभेद समाया हाँ किसे व्याप्त माया आपस गो आप है आदेश तय गुण का नाही प्रवेश जय एक है एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जे आपने आप आपूपति आरा तय कौन कथय कुल तुम ने हारा बहु भी अंत ऊंच दे ऊंचा नानक आपस गो आपे पूछा जे आप शिव पर पंचकार ते गुण में कीनो विस्तार पाप पुनत भई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग पंचावत हाल जाल माया जंजाल हो मैं मोह ब्रह्म व्यापार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की हो बखियान आपन खेल आप कर दिखा खेल संकुच है तो नानकी का ये अवगत भगत थे आप यह पसरे पाचार संत प्रताप दुहू पाक का आप धनी उनकी शोभा उन्हों बने आप है कोच करन चोज आप है रज भोग निर्जोग जिस भावे तिस आपन ना ही लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेस मार अताह अग्नति अतोल

जानै अंतर बसे बाहर भी ओही नान दर्शन देख सब मोही आप सत की आसम सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विचार तिस भावे ता एक अंकार अनिकला लक्षी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कवन निकट कौन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नान सृजन आप बुझाए सर्व भूत आप वर्तारा सर्व नैन आप देखनहारा सगल समग्री जाका तनाऊ आपन जस आप ही सुनाओ आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी के नी माया सबका मद अलिप्त हो रहा है जो किस कहना तो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा भावे था ले समाय इसे हो तो ना ही बुरा हो रहा कहो किने कित कराओ आप बला कर तू तथनी की आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज और पोत आपन संग्राज ताके गतमित कहीं न जाए दूसर हो ता सो जी पाए चित का किया सब परमान गुरु प्रसाद नानक जान जो जाने तिस रास होए आप मिलाए ले प्रभु सोए ओहो तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकत जिसदा भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत

सुनु उपदेश पार ब्रह्म निकट कर भी सास सास तिमरो गोविंद मन अंतर के उतरा चिंद आसमित त्याग गोतरंग संत जना के तूर मन मंग आप छोड़ बिनती करहो साध संग अग्रंथा करत रहो हर तन के परले पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उतारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपा।

आवे कपड़ा नदरी मोकड़वार नानकी वे जानिया सबापी सचियार थापिया ना जाए कीता ना होई आपे आप निरंजन सोई जिन से विया तिन पाया मान नानक गावीए गुण निदान गावीए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नाद गुरमुख वेद गुरमुख रहा समाय गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई ये हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाए गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाए तीर्थ नामा ये तिज बावा बिन बाणे के नाही करी ये ते सिटू पाई वेखा बिन कर्मा के मिला रही मत वितरत जवाहर माणिक जे एक गुर के छिक सुने गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे जु बिचारे आर जा और दसूने होए नवा खंडा विच जानिया नाल चला सब कोई चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तित नदर ना आवई ता बात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुण मंत्या गुण दे तेहा कोई ना सूची ये तिस गुण कोई करे सुनिए तिद पित सुन नाथ सुनिए दर्द।

सदा सलामचंद्रंकार अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर हराम खोर अशंख मर कर जाहि जोर अशंख गलवड़ हत्या कमाहि अशंख पापी पाप कर जाहि अशंख कूड़ियार कूड़े फिराहि अशंख मरीच मल पक खाहि अशंख निंदक चिर करै पार नारक नी

अगम अगम अशंक लो अशंक कह सिर बार हुए अखरी नाम अखरी चाला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरे लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस रणाए यू प्रवाहे तित।

निरंकार तू सदा सलाम च निरंकार भरिया हथ परतम दे पानी तोता उतर गए मूत प्रीति कपड़ होए देसा बूण लिये ओदोए भरिया मत पापा के संग ओ दो पै नावे कै रंग पुन्नी पापी आकर नाहे कर कर कंडा लिख लै जाहु आपे बीज आपे ही खाहु नान हुक्मी आहु जाहु तीरत तप दयाद दान ये को पावे तिल का मान सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीरत मल्लाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए गिण गुण की ते भगत ना होए स्वस्थ सात बाणी प्रभाओ सत सुभान सदा मन चाओ कवन सुवेला भगत कवन कवन चित कवन वा

पातशाहो अमूल गुड़ अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये अमूल भंडार अमूल आवह अमूल लय जाहि अमूल पाए अमूल ला समाहि अमूल त्रम अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल करम अमूल प्रवाण अमूलो अमूल आख्या राजाए आख आख रह लिवलाय अख है वेद पाठ पुराण अख है पढ़ करह वखियान अख है ब्रह्म अख है इंद अख है गोपी तय गोविंद अख है ईश्वर अख है सिद्ध अख है केते कीते बुद्ध अख है दारों।

गावन पंडित पढ़न रखी सर युग युग वेदा नाले गाव है मोहनिया मनमोहन दुर्गा मच पियाले गाव मृतन उपाय तेरे अठसठ तीरथ नाले गाव है जोड़ महाबलसूरा गाव है खानी जारे गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुतनो गाव है जो तुत पावन रत्ते तेरे पवित्र ताले और खेती गावन।

नंदा संतोष धर्म पद जोली ध्यान की करा विभूत चिंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाते मन इत जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग को वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नार आप नाथ नाती सब जाकी रिढ़ सिद्ध अवरा साधु संजोग विजोग दुकार चलावह लिखे आवह पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माय जुगत व्याय तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जीवित सुभाव तिवै चलावै जीव होवै पुरमान ओह वेखै ओ नानंद ना आवै बहुता एह विराण आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जीव एको वेश आसन लोई लोई भंडार जो किच पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सत्य की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जीव एको वेश एक तू जीव बो लख होई लख होवै लखवीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश एतरा हे पतपोड़िया चढ़िया होए इकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नुद्री पाई कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर च पहन जोर।

गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो क्रम केते पौन पाणी वै संतर केते कान महेश केते परमे कार्य करिया रूप रंके वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपरेश केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्धपद नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन मंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंतरांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नान विनोद कोड आनंद सर्व खंड की बाणी रूप तिथे कार्त घड़ी है बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पिताए तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़ी है सुना चाके शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिन में राम रहा भरपूर जिथे सीतो सीता में मा माहे ताकि रूप ना कतने जाहे ना ओहि मरै ना ठागे जाहे जिनकै राम सह मन माहे तिथे भगत बसै के लोह करै आनंद सचावन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नंद निहाल तिथे खंड मंडल वरपंड जे को कतै ता अंतरांत तिथे लोवै लोवै आकार जीव जीव हुकम तिवै दुकार वेख विसै करमी चार नानक कतना करडा चार जत पहारा धीरे सुनियार हैरन मत वेद तियार पाओ खला अग्न तपताओ पांडा भाव अमृत तित टाल कडिया शब्द सची टकचाल जे को नदर करम चिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पावन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया केला सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाच धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़ा के दूर जिन्ने नाम ते आया गए मुशक्कत कारू नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्ने नाम ते आया गए मुशक्कत कारू नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुखवाक पातशाह दशमी छपै सिंध तौ प्रसाद चक्र चिहन अर परन जात अर पात नहिंजे रूप रंग अर रेख भेक को कह न सकत कहे अचल मूर्तन बहु प्रकाश संतोज कही जय कोट इंद्र इंद्राण साहि शान करी जय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तौ सर्व नाम कथा कावन कारम नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रिया छंद नमस्तु अकाले नमस्तु कृपाले नमस्तु अरूपे नमस्तु अनूपे नमस्तु अपेखे नमस्तु अलेखे नमस्तु अकाये नमस्तु अजाये नमस्तु अगंजे नमस्तु अपंजे नमस्तु अनामे नमस्तु अखामे नमस्तु अकर्मं नमस्तु अधर्मं नमस्तु अनामं नमस्तु अदामं नमस्तु अजीते नमस्तु अबीते नमस्तु अबाहे नमस्तु अडाहे नमस्तु अनिले नमस्तु अनादे

कृपाल है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अप्रण है, अभूत है, अप्रण है, अगंज है, अपंज है, अजूज है, अजंज है, अमीक है, रफीक है, अदंद है, अबंद है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निर्त्रीक है, निर्लंब है, असंब है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अक्रम है, अब्रह्म है, अजीत है, अभीत है, अबा है, अगा है, अम्मान है, निदान है, अनेक है, प्री एक है, भुजंग प्रिया छंद नमो सर्वमाने समस्ते निदाने नमो देवे देवे अवेकिया देवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गुणे नमो सर्व गुणे अनंगे अनाथे नरसंगे परमाते नमो बाने पाने नमो माने माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पाने पाने नमो गीत गीते नमो ताने ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पाने पाने नमो बाद बादे अनंगे आरामे तुम समस्ते स्वरूपे प्रपंगे परमाते समस्ते विभूते कलंक बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज विश्रम परम रूपे नमो जोग जोग विश्रम परम विजिते नमो राज राजस्रम परम विरते नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता पेखी अभर्मी अभोगी अभूते नमो जोग जोग विश्रम परम युगते नमो नित नारायण कुरुर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सूत्र में नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो चाह चाह नमो भूपे नमो दान दाने मो मान माने नमो रोग रोगे नमो संतनान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र यंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र नमो सत्य सदा सचिनानंद सर्व प्रणाची अनूपे अरूपे समूर्ति निवासी सदा सिद्धता बुद्धता बुद्ध करता अदो उर्द अर्दंग अगं उग हर्ता परम परम परमेश्वर प्रोचिपाल सदा सर्वदा सिद्धदाता दयाल अचेदी अभेदी अनाम काम समस्त पराजि समस्त चिदामंति राजोर्चा त्रिचंद जल्ले हैं थल्ले हैं अभेद हैं अभेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अधेश हैं अभेश हैं भुजंग प्रिया छंद अगाधे अबाधे आनंदे स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ते निदाने नमस्तु निर्माते नमस्तु परमाते नमस्तु अगंजे नमस्तु अभंजे नमस्तु अकाले नमस्तु अपारे नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेषे नमो राजि राजे नमो साजि साजि नमो साह साहे नमो महामाये नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वपोके नमो सर्वजीतं नमो सर्वभीतं नमो सर्वज्ञानं नमो प्रमुतारं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकीर्तं नमो सर्वरंगे त्रिभंगे आनंगे नमो जय विजयवं नमो वेजि विजयाखिजे अभिजे समर्थं तर्तिजे कृपारं सारूपे कुकर्मं प्रणासि सदा सर्वदा हृदि सिद्धं निवासि चर्पट छंद तौ प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अखल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग बाने सर्वंग बाने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग देवं सर्वंग काले सर्वंग पारे रुआल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन प्रकपार सर्व मान

तात्मात्मा जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बक्र पिरा चतुर मन ही पुरतीन लोक जोदा के बिखै जग जाप ही जे जाप आद देव अनाद मूर्त तप्यो तब जी थाप परम रूप पुनीत मूर्त पुरन पुर का पार सर्व विस्मृत यो तुयं बहुगुण बंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुर का देश धर्म धाम सो ब्रह्मरात अलखु अभूत अलख अभीष अंग राग नरंग जाक जात पातना नाम गर्भ कंजन दुष्ट बंजन मुकुट दायक काम आप रूप अमेक अनुष्ट एक प्रकूत गर्भ कंजन सर्व पंजन आद रूप सूत अंग हेर अभंग नातम एक प्रक्रिया पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व कौ प्रतिपार सर्व गंता सर्व घंता सर्व ते अनपेक सर्व शास्त्र न जानहि जय रूप रंग अरेक परम वेद पुराण जाकर नित भाकत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही बहोचित मधुभा छंद तौ प्रतार गुणगन उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग अनुभव

अनुभूत अंग अभाव अंग गतमित अपार गुण गण उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम हतदूत प्रचंड मित कत खंड आलस्य कर्म आदृ चेतरम सर्व पन्नाट अनंत बाट चात्री छंद तो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं नामे अकामे भुजंग प्रिया चंद्र चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हर्ता चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्र भर्ती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र मान चतुर्चक्र दान चात्री छंद न शत्रय न मित्र न परमंग न वित्रय न कारमंग न काय अदनमंग अजाय न चित्रय न मित्र प्रेह पवित्र प्रतिशय अदिशय दृशय कृशय भगवती छंद तौ प्रसाद गतते के आछी जिजेश के आबिजेश के आगंज कर्म के आभंज वर्म के आबिज लोक के आदि शोक के अवदूत वर्ण के विभूत करण के राजन प्रभा के धर्मंग दूजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के चतरंग क्षत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अधेव है के आप अपेव है के चित्रंग बेहीना के एका अजीना के रोजी रज्जा कह रही में रिया कह के पाक बियाब है के गैबल गैब है के हो अफूल गुनाह है के साहन साह के कारण कुनिंद है के रोजी दींद है के राजक रही में के कर्मंग करीम है के सर्वंग कलिया के सर्वंग दलिय है के सर्वत्र मान के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र भौन है के सर्वत्र देशा के सर्वत्र वेश है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र राज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाओ के सर्वत्र देशा के सर्वत्र वेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेकी के सर्वत्र पेकी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र ठोका के सर्वत्र पोका के सर्वत्र त्राणा के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देशा के सर्वत्र वेश है के सर्वत्र मान सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र बान के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्रा के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीमा के भरमंग पहीमा है के अकल अल्लाम है के साहिब कल्लाम है के हुसनल वजुआ तमाम रजु है हमेशुल सलाम है सलीगत मुदाम है गनीमल शिगस्ता है गरीबल प्रस्ता है बिलंगदुल मकान है जमील जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाय की यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है कनीमल की राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभाह सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदिया रूप है समस्त पराज है सदा सर दुसाज है समस्त सल्लाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है गाध है रूप है उवंग आद रूप है अनाद स्वरूप है अरंगी अरामे त्रिभंगे त्रिकामे त्रिपरंग त्रिपादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभाग्य सुसर्वा अनुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है अचिज है अचूत है कि नरक प्रणा

0: पृथुल प्रवास है, निरुक्त प्रवाह सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है, निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है, चात्री छंद अपंग है अनंग है, अपेक है अलेक है, अब्रह्म है अक्रम है, अनाद है जुगाद है, अजय है अभय है, अभूत है अदूत है, अनाश है उदास है, दंद है बंद है, अभक्त है विरक्त है, नाश है प्रकाश है, निचिंत है सुनित है, अलिक है अधिक है, अलेक है अभिक है, डा है अगा है, असंभ है अगम्भ है, अनिर है अनाद है, अनित है सुनित है, अजात है अजाद है, सर्पट चंतो प्रचार सर्वघंता सर्वघंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वघर्ता सर्वकर्ता सर्व प्राण सर्वत्राण सर्व कर्म सर्व धर्म सर्व युक्ता सर्व मुक्ता रसावल छंद तौ प्रचार नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्म परमात्मे सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगे त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे त्रिभंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निर्ताकं सरीकं तो अमीक है सदैव प्रवाह अजय है अजा है भगवती छंद तो प्रचार के जा हर जहूर है के हाजिर है दूर है अमृतल सल्लाम है समृतल कल्लाम है के साहिब दिमाग है के उसल चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दिहंद है के राज करहिंद है करीमल कमाल है के जुल हुस्नल जमाल है गनीमल के राज है गरीबल निवाज है हरिफुल चिकन है हीरा सुल्पिकन है कलंक प्रणास है समस्त निवास है अगुंजल कनीम है रजा करहीम है समृत जुबा है के सायर किरा है के नरक प्रणास है बैसुल निवास है के सरबुल गवन है अमरसुल रवन है तमामुल तबीन है समृतुल अजीज है पारंग परम ईश है समृतुल आदिश है अदेशुल अलेक है अमेशुल अभेक है जमील जमा है अमिकुल इमा है करीमल कमाल है के जरूरत जमाल है के अतरंग प्रकाश है के हम तो सुभाष है के अजब स्वरूप है के हम तो विभूत है के हम तो पता है के आत्म प्रवाह है के अतरंग अनंग है के हम तो अपंग है मधुबार छंद तो प्रताल मुनमन प्रणाम गुणगन गुणाम हर पर अगंज हरनर प्रपंज अनगन प्रणाम मुनमन सल्लाम हरनर अखंड वर्णन अमंड अनुभव अनास मनमन प्रकाश गुणगर प्रणाम जलतन बुराम अंचित अंग आसन अपंग उपमा अपार गति में तु उदार जलथल अमंड दिश विच अपंड जलथल महंत दिश विच व्यंत अनुभव अनास निर्दीर्त धर्त दुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कथनी अदार खल खंड क्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरनाम अंचित गात आजित नाबात अंजंज गात अंदरंज बात अंटूट भंडार अंठ कपार आदीट तरम अटीट गरम अंडवरण अनंत दाता महंत हर बोर मना छंद तौ प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है मैं मंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोपारण है धृत के धर है जग के करण है मन मानना है जग जानना है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्व पास है सर्वनाश है करुणा का है शंभर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मांड है कलखंड है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है तपा तप है अकृता कृता मृता मृता मृता मृता करुणा कृता है अकृता कृता धरणी धृत है अमृतेश्वर है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृता मृता मृता है अजबा कृता मृता मृता है नर नायक है कल कायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृप नायक है सर्वपायक है बहुपंजन है अर्कंजन है रिप्तापन है जप जापन है अकलंग कृता तर्पा कृता है कृता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रिया चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजे राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेजि तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीजी बीजे नमो राज संताम संक्रांत रूपे नमो प्रम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नम ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पानी पानी नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंडी भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसुयाचे नमो बाक वंगी या बंगी चारूपे आनंगी आनामे त्रिभंगी त्रिकाले आनंगी या कामे एक श्री चंद अजय अल अभ अभ अभू अजु अनासकाच अगंज अपंज अलक अपक अकाल दयाल अलिक अपीक अनाम अकाम अगाह अडाल अनाथे परमाते अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म अपरम अकर्मं अपरमं अगंजे अलेके भुजन प्रिया छंद नमर्तुल परनामे समर्तुल परनासे अगंजुल आरामे समर्तुल निवासे निरकामं विभूते समर्तन स्वरूपे कुकर्मं परनासे शुद्रमं विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग परनासे करीमल कुनिंदा समर्थ निवासे अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं ग्रीमल रही में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते जोयंग बोसुभंग सर्वदा त्रिभुगते दुकालंग परनासे दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगम विभूते दुकालंग परनासे दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगम विभूते एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाह दत्तम तो प्रसाद सवैये सरावग शुद्ध समूह सिदान के देख प्रियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह एक मति के अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखे तो प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर रंग अनुपूतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के कौन को जात निवारे पारे पुजान के भूप बलिविद न्यावत चेतना जात विचारे एथे भय तो कहाँ भय भूपत अंत को नांगे ही पाई पदारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत कौल मृदंग नंगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूर्त पविक पवान के भूपत कौन गनाए नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नाम दया दमदान शोषण जमनेम अनेक विषेक वेद पुराण कदीप कुरान जमीन जमान सुबान के बेकर पौन आहार जति जतार सब सुविचारक हजार देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक नालिक शुद्ध सिपाह दुर्त दुपा तो साज सराह दुर्जान दलेंगे पारी गुमान प्रेम कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरिन मरोर वासन तोर अरिन मरोर मुवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे बेर अपार बड़े ब्रियार अब चार चार की तार पछिया तोरत देश मलिंद मवातन माते गजान के मान मलैया गाडी गडान के तोड़नहार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को त्रिनायक जाचक एक सो जाचक अनेक सो देख दिवैया दानव देव फनिंद निसाथ भूत पवित भवान जपेंगे जीव जीते दल में थल में पल ही पल में सब थाप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तो तुन पापन के बो पुंज कपेंगे साध समूह प्रतन फिर जग शत्र सब और लोक जपेंगे मानव इंद्र गजिंद सुंदरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद गदार अनेक स्वंबर साज परेंगे ब्रह्म महेश्वर विषण सती पद अंत पदे जम्पात परेंगे जे नर त्रिपत के प्रसंग पग ते नर फेरना देह धरेंगे कहा भयो जो तो लोचन मुंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ प्रियो लिये साथ समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो बात कियो बिखियान तो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबह चितायो साच कहो सुन ले सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो काहू लै पाहन पूज दरो सिर काहू लै लिंग ग्रह लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पछा को शीर्ष निवायो को भूतान को पूजत है पशु को मृतान को पूजन दायो कूर क्रिया उरंजियो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया उरंजियो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो।
1: पाई। हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण हो चित की इच्छा सब चरणन में रहे हमारा अपना जान करो पर सवारा हमरे दुष्ट भय तुमका हो आप दे में बचाओ सुखी वसै मोर परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैन को आ संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और न त्याऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आपा दे मुझे उभरी है मरण काल का त्रास निभरी है हूं जो सदा हमारे बच्चा श्री तू जो करियो रक्षा राख ले मेरा खनहारे साहिब संत साहिब तारे दीन बंदुष्टन के अंता तुम अपरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा भुगतरा काल पाए शिव जीव अवतारा काल पाए कृ विष्णु प्रकाशा सकर काल का क्या तमाशा जवन काल जोगी शिव की हो वेद रा ब्रह्मा ज्योति हो जवन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दे जन बुझायो आद अंत के अवतारा सोए गुरु समझियो मारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सदरन को पल मोहम्मद की हो घट घट के अंतर की जानत बरे बुरे की फिर पचानत चीटी ते कुंचर अस्तुला सब पर कृपा दृष्ट कर बोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की फिर बचाना घट घट के पट पट की जाना जब दुख करा कर तारा पर जा तरथ तब देह अपारा जब आकर अख कर दो काबू तुम मैं मिला दे दर सब हूं जेते बदन शिट सब धारे आप निबूद उचार है तुम सब ही तेरे तिनेरालम जानत वेद भेद अरे आलम निरंकार निर्वकार निर्लंबाद नील नाद संभव ताका मुड़ चारद वेदा जा को भी न पावत वेदा ताको कृपान हनुमान तमाम मुड़ कुछ भेद न जान महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिन्हत ने भी हुआ पाप निबुद जेती बंडत भिन्न भिन्न भिन्न बर्णत भिन्न भिन्न तो जेती तुमरा रखान जाय पसारा के विश जाप संसारा नेक रूप रूप रंग पहुरावे के पुपा अंडा जे रचे तजकीन उत्पुज खान बहु रच देनी कहो बोर राजाओं बैठा कहो सिमर बो शंकर कैठा सगरे शेष दिखाए चंबुआ जुआ स्वरूप शंभो अब रक्षा मेरी तुम करो से खुबार से संघरो दोष जीते उठो तुत पाता सकर मनेज करो रणघाता जे अतित सरणी परे तिरके दुर्द कथो मरे वर्ख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याए ताके कान निकट न्याय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला कृपा दृष्ट संजाय नारियो ताके ताप तनक मोहरियो रेद सेद कर्म सब हो ही दुष्ट छा छव सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवारा काल पाज देता है बारा जिन नाम तिहारो का दारा दुष्ट दुख से राह खड़क के तुम्हें सुन तिहारी आपा दे लो बारी सर्व ठौर म हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के तुम

सतगुरु मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरण ही सतगुरु सब सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए। आओ सिख सतगुरु के प्यारियो, गाओ सच्ची बाणी, बाणी तक गाओ गुरु केरी बाणी आशिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिन संवाणी, पियो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारंग पाणी। कह नानक सदा गाओ ए सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तक कच्ची सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आक वखाणी, हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी। चित जिन का हिर लिया माया बोलन पैर वाणी, कह नानक सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागायो आओ समाओ। सब सिद्धी मन मलिया सच्चे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनों दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, शिव सुखताप पाए कह करता आपे हुक्म बरताए। हुक्म बरताए आप वेख्या गुरमुख किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सोली उलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र वेद सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्य साण जानी तत्य साण जानी गुरु बाजो तत्य साण जानी। तेही गुणी संसार परम सुता सुतिया रहन व्याणी, गुर कृपा ते से जन जाके जिन्ना हर मनुष्या बोले अमृत बाणी। कहे नान सो तत् पाए जिसनो अंध न लिवला के जागत रहन व्याणी। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है उड़दाता जे अग्न में आर पहुंचावे। उसनो क्यों पौ न सकी जिसनो अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है। कहे नानक उड़दाता सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, माया गन सब एको जे ही करते खेल रचाया। जा तिस पाणा था जमिया परवार पल्ला पाया, ले छुटकी लगी तिसना माया अमर वरताया। हे माया जित हर विसरै मो उपजय भाव दूजा लाया, कहे नानक गुरु प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। हर आप अमूलक है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसे विटो रहे लोक विललाए। ऐसा सतगुरु जे मिले तिस नजर सौंपी है पिछो आप जाए। जिदा जो तिस मिल रहे हर वसै मन आए, हर आप मूर्ख है भगत ना के नानका जिन हर पल्ले पाए।

शास्त्र वेद दकै खड़ो भाई, कर्म करो संसारी, पाखंड मैल न चूकई भाई, अंतर मैल विकारी, इन बिद डूबी माकुरी पाई, ऊंडी सिरकै भारी, दुरमत कणी विगूती पाई, दूजे भाए खुआई, बिन सतगुर नाम न पाई है भाई।

पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है सार पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डिया कात पड़ी है जेते पर।

0: बलहारी कुदरत मसीहा तेरा तेरे जाई लगे रहा जात में जोत जोत में जाता कल कला भरपूर रहे तू सच्चा साहेब सब सुवाल जिनकी थी सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहे
1: महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दों सूर शब्दों शुद्र

अथ अगंत्यतुल्य ज्यों बलावहं त्यों नानक दास बोले पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट कै

कोई न जाने तुम रायांत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगिरी तुमरा सुतर तारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी।

की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही रहाओ। अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन न वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागे। अखर बिरख बाग दो भोए चोखी, सिंचित

मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जुगत नाही, कह नानक जीवा ले जिया, जह पावै तह राख तुही। आसा महला पहला

तुरियावस्था गुरमुख पाई संत सभा की ऊट लही ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप जिस हर हृदय

नदर करे ता एहुम हो जाए। नानक हर स्यों रह सुमाए, आसा महला पहला आप करे सचल खबार। हौ पापी तू बख्शनहार, तेरा भाणा सब किच हुवै। मन हठ कीचै अंत विगो वै रहाओ, मन मुखी मत कूड़ व्यापी। बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाह किच लेवहो। जो पजै सो अलक अपेवहो, ऐसा हमरा सखा सहाई। हा गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

पेव कड़ै तन खरी इयानी, तिस सहकी मैं सार न जानी, सोह मेरा एक दूजा नहीं कोई, नदर करे मेला वाहुई रहाओ, साहुर डै तन साच पछाणिया, सहज सुभाए अपना फिर जानिया, गुर प्रसादी ऐसी मत आवै, ता कामन कंतै मन भावै, कहत नानक भै भाव का करे सिगार।

जति सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पहला, छे कार छे गुर छे उपदेश, गुर गुरे को

उन चानन ओ सोखिया चूका जम स्यो मेल लोका मत को फक्कड़ पाए लख मड़िया कर।

हर हर हार कंठ ले पहरे, हर हर हार कंठ ले पहरे, दामोदर दंत ले कर करता कर कर करता कंगन पहरे, इन विद चित्त तरे मधुसूदन कर मुंदरी पहरे, परमेश्वर पट ले धीरज धड़ी बंधावे कामन।

जम कर मुगल चढ़ाया, इती मार पई कर लाने तै की दर्द न आया। करता तू सबना का सोई,

गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर कै दर्शन मुक्त गत हुए, साचा आप वसै मन सोए रहा, गुर दर्शन उदरै संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा, पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर कै दर्शन।

गुण अमूलक पाए न जाहे, मन निर्मल साचै शब्द समाहे, सेवड भागी जिन नाम ते आया, सदा गुणदाता मन वसाया, जो गुण संग्रह तिन बलिहारै जा।

अत निर्मल गुरु शब्द विचारु, नानक नाम सुवारण हारु। आसा महला तीजा, दूजे भाई लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथ

संत संगत मिल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदरन हार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत मैल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरह।

पूरै बूज बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथो छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जून विष्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर कौ

तन मन अर्पे सतगुरु शरणाई, हिरदय नाम वड़ी वड़ियाई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक तुए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदर रहाउ, करनी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई, करनी कीरत नाम वसाई, आपे देवै ढिल न पाई, मनमुख भरम भुलै संसार, बिन राशि कूड़ा करे व्यापार, बिन राशि वखर पल्लै न पाए, मनमुख भुला जन्म गवाए, सतगुर सेवे सो लाला होए, उत्तम जाति उत्तम सोए, गुर पौड़ी सब तू ऊंचा होए, नानक नाम वडाई होए, आसा महला तीजा, मनमुख झूठो झूठ कमावै, खसमे का महल कदे न पावै, दूजे लगी भरम भुलावै, ममता बादा आवै जावै, दुहागणी का मन देख सिगार, पुत्र कलत्र धन माया चितलाई,

शब्दे ऊंचो ऊंचा हुई नानक साच समावै सोई आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुभाए गुर कै भै साचै साच समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुखरुने अपनी पत खोए मेरे मन हर जप सत।

तिनकी गहन गत कही न जाए, पूरे सतगुर दित्ती वडियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई।

नानक नाम रते सुख होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संग जी, आप जी वडभागी हो जो गुरु चरणा विच बैठ के, घरां विच बैठ के नितां प्रति अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। सतगुरु जी ने कृपा कीती है, पावन अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ आप जी ने सरवण कीते हन। गुरुदेव जी कृपा करन, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव हिरदियां विच वसा देन, दरों करों चढ़ती कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाजन। आप समूह संगत दा धन्नवाद। आओ हुण अमृत बाणी दे कीर्तन। साहिब सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह, मीरी पीरी दे मालक सतगुरां दा अज गुरता गती दिवस है। सोना दी गुरियाई नूं मुख रखदिआं विशेष कीर्तन हाजरी भाई साहिब भाई हरप्रीत सिंह जी दा जत्था भरेगा। आप जी प्यार साहिब सरवण करो जी, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।